रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आके

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत

0: रखने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.
2: Tech Talks
3: with RJ Zeus.

0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए, जब भी आए सुहानी शाम, सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM पर।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद, तो बहुत डर लगा है। हे वैष्णो देवी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी।

0: Daniela. Daniela.
1: दीदी
2: हाँ
1: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
2: उससे आपा

जी हाँ, शुरू तो हुआ है आपका और मेरा सफर, जो कि रुकने वाला तो नहीं है आज। यानी ये एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये सारी बातें मस्ती मजाक पर एंटरटेनमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है सैटरडे, एंड सैटरडे पे एक अलग ही वाइब और ट्राइब होती है। ये तो मेरा मन है। अब देखने वाली ये बात है कि शो में आप किस हद तक अपने विचार हम तक पहुंचाएंगे। देखिए, ज़रूरी है कि जब हम प्यार बढ़ाते हैं और अपना, वो कहते हैं ना कि ये कीमती टाइम जो है आप मेरे साथ बिताने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे ख्याल है, उम्दा ख्याल है आपके। और मैंने बस सोच लिया है कि आज ढेर सारी बातें करूँगी और सुनूँगी कि आखिर क्या प्लान्स बनाए हैं आपने। वेल, आई तो सुपर एक्साइटेड हमेशा की तरह कि आपसे ढेर सारी बातें करनी है और जानना है कि क्या प्लान्स है, क्या है वो बेहतरीन सी थॉट। आपने सुबह जब आप उठे तो आपको लगा कि सच में कुछ अच्छा होने वाला है, और क्या थी वो अच्छी सोच और क्या एक्सपीरियंस था, और ओवरऑल सुबह उठ के क्या थी वो वाइब, वो मुझे बताइए। शो का ऐसा बन जाए और बताइए कैसे है आपके हालात, जज्बात, ख्यालात, और वही है कि अकेले बस है, मज़ा नहीं आता है और ऐसा लगता है ना कि भैया कुछ तो मिसिंग है। और ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए मुझे लगता है कि आपके साथ की ज़रूरत होती है, और आपके बगैर वो ज़रा नामुमकिन सा है। दूर, बिल्कुल थोड़ा सा दूर, यानी कि शो की टाइमिंग थोड़ा सा नहीं, थोड़े से एक्स्ट्रा होगा, और एक्स्ट्रा तो है ही। अब बैक टू बैक सॉन्ग्स भी देख लीजिए। अब मैं तो मानती हूँ कि कम वक्त इश्क तो है ही ऐसी चीज़ की, भाई एक बार ये समझ जाए कि बैक टू बैक सॉन्ग्स है एंड दैट विदाउट एनी एनियन गेट फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चुनाव पर पूरा। सबसे ज्यादा एंजॉय कीजिए बैक टू बैक सॉन्ग्स, आप सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

हाय, मैं हूँ आरजी ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

शो चुनाव भी सब एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM. सारी बातें हो रही हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप तक हम इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेशनल हाईवे की बात करें तो आपको बता दें कि स्मूथली ट्रैफिक को अलो किया जा रहा है बोथ साइड से जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू. आप आ सकते हैं, जा सकते हैं एंड बी केयरफुल, बी कॉशियस, क्योंकि अभी के लिए अभी अगर हम देखें तो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी हो रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए. सो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है. ट्रैफिक मूवमेंट भी बढ़ सकता है आने वाले वक्त में. और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्राइविंग एसओपीज़ को हमने फॉलो तो करना है, लेकिन जो गाइडलाइंस हमें दी गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन्हें हमें मद्देनज़र रखते ही अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन प्लान बनाना है. एंड ज़रूरी है हमें कॉपरेट करना है ट्रैफिक पुलिस के साथ, कॉपरेट करना है खुद के साथ. वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारी ये जिम्मेदारी है. हम खुद से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं कि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव मैसेज आएगी तो हमारे साथ 10 और लोग उस चीज़ को समझ पाते, वो भी उस चीज़ को फॉलो कर पाते. ना कि हम सच में अगर चाहे तो लाइफ में हीरो भी बन सकते हैं, ज़ीरो नहीं, बट हीरो बनने की कोशिश करने के चक्कर में ज़ीरो नहीं बनना है. कूल बनिए, फूल नहीं. और ये जिम्मेदारी भी हम तक ही है. देखिए हमारा संग तो आपके साथ है और मेरा संग कब तक है वो भी आपको पता ही है. कुछ स्पेशल शोज और आपका और मेरा साथ. बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि वी केयर फॉर यू. जब हम इस बात को कहते हैं, आप तक पहुँचाते हैं सही इन्फॉर्मेशन, वी मीन इट कि हम आपका ख्याल रखते हैं. फिलहाल मुझे पता है कि आप तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 8899904904 पर कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप करना है, शो कैसा बनना है. इन्जॉय कीजिए हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM.

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर
1: टाइट वेरी टाइट।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Diva.
1: खबर ऑनलाइन
2: आज की खबर, आज की खबर, आज की खबर, आज की खबर। स्वागत है आज की
1: जी हाँ, स्वागत है आपका आज की ताजा ताजा न्यूज में। और ब्रेकिंग न्यूज लेकर मैं हूँ हाजिर तिवन बहुत खबर विस्तार से। तो बात कर रहे हैं जो भी चल रहा है हमारी सोशल मीडिया पे, ट्रेंडिंग क्या है। और ट्रेंडिंग कुछ दिनों से तो सिर्फ सोशल मीडिया पे जाने के वहाँ है जवानी तो इश्क हाना है। जी हाँ, मूवी रिलीज हो चुकी है 5 जून को और मूवी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ पहले दिन पे वर्ल्ड वाइड इन्होंने कमा लिए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि क्या मूवी हिट होगी कि जीरो।
0: खबर ऑनलाइन
2: आज की खबर, आज की खबर।
1: तो ये हिट या फ्लॉप की जहाँ पर बात आती है वो तो वरुण धवन नहीं देखते क्योंकि अपनी ही मूवी है। जी हाँ, अपनी प्रोडक्शन हाउस की मूवी है और ये सब बताया जा रहा है कि मूवी काफ़ी अमेजिंग है, स्टोरी लाइन अच्छी है, बट बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बैक बॉस है।
2: आज की खबर, आज की खबर, आज की खबर।
1: अब जिन्होंने मूवी देखी है उन्हीं को पता चलेगा, पता होगा कि क्या है, कैसा एक्सपीरियंस था उनका मूवी के साथ, उन्हें क्या लगा कि कैसी थी मूवी, वो आप हमें बताएंगे। अगर आपने मूवी देखी तो फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इंडिया का जो नेट कलेक्शन है दैट वाज 7.50 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 9 करोड़ एंड ओसीज ग्रॉस कलेक्शन में इट वॉज 2 करोड़, सो वर्ल्ड वाइड इट्स 11 करोड़।
0: खबर ऑनलाइन।
1: तो अगर आपने मूवी देखी है तो क्या आपको लगा कि जो रीमेक ये मूवीज़ अभी आ रही है वैसा ही कमाल तो नहीं कर रही, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, बट स्टिल कुछ ऐसी मूवीज़ है जो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा उनका कलेक्शन होता है, लोग पसंद करते हैं। बट आपका क्या कहना है, क्या लगता है कि आपको क्या ये मूवी कमाल करेंगी या फिर यही है कि कहेंगे ये तो भैया जी बस फ्लॉप होने के लिए बनी थी। मुझे बताइए शो कैसा बन जाइए 8899-0494 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और शो चिनार बीस कैसा बन जाइए।

0: मैं हूँ आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

शो चुनाव और वी सब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM पे सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर रेडी यानी कि यूथ के लिए जो भी फ्यूचर रेडी है मेकिंग यूथ फ्यूचर रेडी एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और क्या है आज का यूथ और क्या है उनका फ्यूचर कैसे वो अपना फ्यूचर बना रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो क्या चेंज आ चुकी है क्या हम देखें तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ चुका है इकॉनमी में कितना चेंज आया है ट्रेडिशनल स्किल्स जो क्विकली हम देखें कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है पीपल आर अडाप्टिंग नई नई चीज़ें यानी कि एक ही चीज़ पे हम स्टक नहीं हैं हम डिफरेंट चीज़ें अपना रहे हैं स्किल्स यानी कि हर एक चीज़ ज़रूरी है ये लोगों को समझ आ रहा है और आज का यूथ मुझे लगता है दे आर मोर एडवांस्ड अगर हम पहले देखें तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं और शायद से हम अपने कोकोन से बाहर निकलते भी नहीं थे बट अभी के लिए यूथ आर रेडी दे आर रेडी कि अपना जो फ्यूचर है उन्हें चाहिए बिल्कुल एकदम वो कहते हैं ना कि फाइन हमें चाहिए और पता होना चाहिए कि आज अगर हम एक ही चीज़ पे रहे तो क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करें तो ऑब्वियसली बहुत सारा हमारा वो फोकस रहता है और शायद हम डिफरेंट चीज़ें नहीं सीखते लेकिन आज का यूथ जो है उन्हें पता है आज एआई का ज़माना है एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी है तो उन्हें हर चीज़ को समझना और सीखना है. जी हाँ और नई नई स्किल्स और एक नया एनवायरनमेंट नई कम्युनिटीज़ अगर हम देखें तो नई चीज़ें अभी आ रही हैं हमारी सोसाइटी में एंड नया सब कुछ है सो इस नए ज़माने में ये नई चीज़ें ज़रूरी है क्या लोग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इस बारे में बात हो रही है. आप भी शो का हिस्सा बन जाए 8 8 4 9 0 4 9 0 4 पर आप शो का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप करके शो चुनाव बीच पर मेरे साथ.

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Sorry, me.
1: रेडियो चुनाव पर आप सब एंजॉय कर रहे हैं शो चुनाव बीट्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर रेडी यूथ। अगर हम बात करें कि आज का यूथ जो है दे आर मेकिंग देयर फ्यूचर एंड उन्हें पता है कि लाइफ में हमें करना क्या, यानी कि आज का जो युवा है उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर लाइक ऑलवेज कि जब स्टार्ट किया उनको पता होता है कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या चीज़ें करनी है, आगे किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और कौन सी सी चीज़ें हैं जिनमें हमें फोकस करना है और कौन सी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें दूर करना पड़ेगा ताकि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और ज़रूरी व्हेन वी टॉक अबाउट बियॉन्ड टेक्निकल एबिलिटी फॉरवर्ड थिंकिंग एजुकेशन जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और मुझे लगता है इस चीज़ से जो है यूथ काफ़ी ज़्यादा एम्पावर होता है सो दैट वो अगर हम देखें तो ग्लोबल जो इश्यूज़ है, चाहे फिर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें, ओवरऑल अगर लगे कि कोई चीज़ ऐसी गलत हो रही है उस पर उन्हें पता है कि बात करनी है और उन्हें पता है उनके हक है, कानून है, कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। यानी एकदम से ही सेट बोलेंगे, यानी कि दिमाग सेट है, चीज़ें सेट है और जो चीज़ें हैं और उन पे फोकस करना और पता हो फ्यूचर हमारा सिक्योर है तो सही है, अगर गलत कुछ हो रहा है उस पर बात करना ज़रूरी है, इससे बेहतर चीज़ बेहतर सोच हो ही नहीं सकती है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि क्या सही है क्या गलत है और आज का युवा जो है जो अपने लिए खड़ा हो रहा है बात कर रहा है, क्या ये चीज़ ये दौर सही है या तब जब शायद से उन्हें सोचना पड़ रहा था कि बात करें नहीं करें। आप बताइए शो कैसा बन जाइए, 8899904904 कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शूट नार्वीज कैसा बन जाइए।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

आधे दिल गार्डन गार्डन ही होता है जब मुझे ये पता होता है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम आपके साथ स्पेंड करना है, स्पेशली नॉट टू इट्स 2:30. अब आप गेस कीजिए मुझे क्यों रुकना है 2:30 बजे तक, क्या है वो प्यार जो मुझे रुक रहा है वो आप मुझे बताइए. फिलहाल के लिए शो चुनाव बीट्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं और शो म्यूजिक ऑन डिमांड को वेलकम करते हैं. और आप अपने फेवरेट ट्रैक्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 8899904904 पर. कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए.

Jeremy. Chinar Beats ve Darje Diva. Only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Yes, I want you and you want me and we together want radio. Yes. क्यों हंस रहा
1: है? बिल्कुल आप भी excited हैं, मैं भी excited हूँ, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा
0: है। मौके दस्तूर है, दोनों है साथ, आप हमारे साथ, हम साथ साथ निभाइए हमारा साथ, क्यों हंस रहा?
1: बिल्कुल बहुत साथ साथ हो गया, बट ये सच कह रहे हैं कि आपको हमारा साथ निभाना चाहिए। 8899049904 is the number, you can call, message, text, WhatsApp, और बन सकते हैं रेडियो गर्ल्स का हिस्सा।
0: बिल्कुल, अभी तो पिक्चर शुरू।

0: नोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ये तो सच है, लड़कियां लड़कों सी नहीं होती, थोड़ी अलग होती है, शर्मीली होती है, ये तो मैं कह रही हूँ। पता नहीं अस्रा का क्या कह रहा है।
1: भैया आज का तो ऐसा कोई सीन है नहीं कि मुझे ऐसा लगता है शर्मीली लड़कियां भी मिल जाती हैं, ओपन आउट स्पोकन हमारी तरह लड़कियां भी मिल जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बता देना चाहिए दीबा हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं।
0: यस, देखिए बात हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेन कैरेक्टर जो होता है ना एक लड़की का अपना, यानी कि खुद में ना मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप्स कि भाई मैं हूँ। अब ये नहीं है कि मैं ही हूँ वो गलत चीज़ है, बट मैं हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस होता है और आज के ज़माने में उसे मेन कैरेक्टर एनर्जी कहते हैं।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है दीबा कि मेन कैरेक्टर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमें लुक्स में नहीं, हम क्या करते हैं उसमें नहीं, बल्कि हॉबीज हो, पूरी लाइफ हो, उसमें वो झलकता जरूर है, बिकॉज मेनली इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस। एंड जैसे कि आपने कहा कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, ऐसी वाली एनर्जी जरूर होनी चाहिए।
0: एंड इट्स नेसेसरी कि हम सबको पता हो कि इन चीज़ों से बहुत कुछ बदल रहा है हमारी ज़िंदगी में। पहले अगर हम देखें तो लड़कियां सेम ही सी थी, कहीं ना कहीं थी, बहुत सारी लड़कियां थी ऐसी कि जो सच में बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन शायद से डर की वजह से नहीं कर पाती थी, या फिर ये भी डर था कि भाई समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बट यही था कि हम अपने ही डर से शायद से वो चीज़ें नहीं कर पाते थे। थोड़ा सा रेबल होना पड़ता है ज़िंदगी में। अब आज देखिए हर कोई रेबल होना पड़ा है कि नहीं जी हमें करना, एंड दैट्स really good कि आप सच में अपने लिए लड़ रहे हो,
1: स्टैंड ले रहे हो,
0: आप अपने लिए कुछ कर रहे हो और आप सच में बोल रहे हो लोगों को देखिए हम अच्छे जा रहे हैं, आपका नहीं पता है, आप देखो अच्छा बोलो ठीक है, आप अच्छा नहीं बोल रहे हो, दैट इज सो गुड कि आप हर चीज को पॉजिटिवली ले रहे हो तब तक जब एक्सट्रीम नहीं हो रहा है। हाँ, आप सही जा रहे हो, लोगों के साथ अच्छे से डील कर रहे हो,
1: बिल्कुल।
0: आई फील दैट्स रियली नाइस,
1: रियली नाइस। और जैसे कि दीबा ने कहा ऐसे चार लोग क्या कहेंगे, चार में से दो लोग हम बैठे हैं और हम ही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे, प्लीज अपनी लाइफ जिए। एंड सबसे बड़ी बात दीबा, जब हम आसपास देखते हैं, स्कूल रूम्स देखें, वर्क बोर्ड रूम्स देखें, जो भी जगह है, जो भी फील्ड है, व्हेन वी टॉक अबाउट इट एंड वी सी के जो लड़कियां हैं खासकर, हमें बहुत जरूरत होती है वैलिडेशन की, क्योंकि हम अच्छे दिख रहे हैं, हम पहले अपने दोस्त को पूछेंगे मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं, या कोई भी काम हम करें हमें वैलिडेशन की जरूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे वुमेन नीड टू सेल्फ वैलिडेट, खुद को खुद वैलिडेट करो, खुद को खुद बोलो कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छा कर रही हो, तुम और कर सकती हो, दैट इज द मेन कैरेक्टर एनर्जी।
0: यस दैट्स ट्रू, क्योंकि आई बिलीव कि वैलिडेशन ही नहीं बल्कि आप कैसे दिख रहे हो, अगर आपको वो चार लोग नहीं बोल रहे आपको पता है ना आप कैसे दिख रहे हो,
1: एग्जैक्टली
0: दैट इज द मेन कैरेक्टर एनर्जी। राइट नाउ आई एम सरप्राइज कि लोग कितना ज्यादा, अगर आपको पता है कि आप

0: गीले दिख रहे एंड पीपल आर कैरिंग दैट ओ माय गॉड आई एम बैडी एवरो सो दैट इज सो गुड. आप किसी को देख रहे हो, आप उसका कॉन्फिडेंस उन कपड़ों में देख रहे हो,
1: बिल्कुल
0: वो कैसे उन चीजों को कैरी कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली,
0: दैट इज सो गुड. आप खुद को मेन कैरेक्टर मान रहे हो, तभी लोग भी बोल रहे हैं वाह भाई क्या बात.
1: एग्जैक्टली, एंड इसी से मुझे कहानी याद आती है. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन दीबा, और उसे हमेशा बोला जाता तुम कुछ एक्स्ट्रा बात करती हो, ओवर एक्टिंग करती हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी के लिए. ओवर एक्टिंग है एक्चुअली, दैट्स द कॉन्फिडेंस.
0: यस, दैट इज द पॉइंट.
1: ये इंसान जो बाकी लोग आपको अगर बुरा कह रहे हैं, वो उनकी इनसिक्योरिटी है, उनको उस इनसिक्योरिटी में रहने दीजिए और आप अपना काम करते
0: हैं. ये तो बड़ी अच्छी बात कही असरा ने, क्योंकि लोग, या दैट्स ट्रू, कि आपको अगर कुछ बोला जा रहा है, बिलीव कि आप में अगर बात है तभी बात होगी, आप में कोई बात ही नहीं है तो क्या बात ही होगी, कोई बात नहीं होगी. सो जैसे हम बातें कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ बातें करें, और ये सफर को कंप्लीट तो आप ही करते हैं.
1: बिल्कुल, बात बात में आप भी अपनी बात बताइए. yes. और 8899-04-904 से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम. ये है
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये है आपकी हमारी सबकी धड़कन.

Jeremy. Jar Beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं।

0: हाय मैं वस्त्र शुरू हो चुका है हंगामा। और देखिए अभी आज ऐसी ही शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि रेडियो गर्ल्स था, रेडियो गर्ल्स से वी हैव ट्रांजिशनड इनटू हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बाजेंगे और क्या चल रहा है।
1: तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना,
0: देखिए जानते तो आप हमें हैं पर मान भी जाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हर बार की तरह अपडेट्स, ट्रेंडिंग क्या है, उसके अलावा आज का एक टॉपिक भी, एंड ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं स्पेशली जो ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स हैं, कि रील है या रियल है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सिटी 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन रे।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पड़ोसियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गए।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: जिस

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर

दिन, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी।

0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

कष्टी जी चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

0: हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।